0: सब दोस्त परा रे वो फने के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंग वन वाहला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेख बाके मुब अब्बा पाप दें बनो के अमल फी कितू बा इटालिया अस्त अल्लाह के बामोनी.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.